0: It's 8 a.m. The Shine Check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry. The offer is valid for a limited time only. Higher. More creation. More possibilities.
3: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT. Muft Checkbook. Muft Online Banking. Aur behtreen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account. Jahan khaab, wahan HBL.
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नात्रा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: Higher No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे mobile app से complete control. No frost, no worries.
3: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त checkbook, मुफ्त online banking और बेहतरीन mobile app की सहूलत के साथ HBL Freedom Account. जहां खाब, वहां HBL.
6: Higher Mini LED TV के साथ.

0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
4: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
5: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
7: This program is brought to you by
8: AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
7: And
9: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
7: And And
10: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
7: And
11: ab karo safar tension free, kyunki Jazz Cash hai na.
7: And
1: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
7: And

मैं तुमसे तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। आई नो व्हाट यू वांट, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: चुगले दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग।
2: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
1: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
8: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
9: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
10: Hire mini LED TV ke saath 3 mahine ki tap mat subscription bhi with free installation. 144Hz picture quality. Jandar. Banaye har match ko shandar. Powerful KEF British speakers. और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
11: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Sivan Stone, ek aisa program जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
5: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
6: دس پروگرام از برٹ

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry, the offer is valid for a limited time only. Higher, more creation, more possibilities.
3: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
4: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de Mobile App se complete control. No Frost, no worries.
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
7: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
8: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: ऑल नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: This program was brought to you by and
1: ab karo safar tension free kyunki jazz cash hai na
0: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL. It's 9 a.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें याद रखें बेनजीर मोबाइल से मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है कतार ना इंतजार खवातीन होंगी बाइख्तियार बेनजीर का बेनजीर ख्वाब हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार
4: For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry! The offer is valid for a limited time only. Higher. More creation. More possibilities.
0: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT. मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खाब वहां HBL
5: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल

0: freedom account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
2: Cool King.
3: Bijli ka bill dekha. Aankhon ne double check kiya. Phir bhi shock same. Isi baat. लेकिन बीपी हाई।
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
6: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL।
1: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: दिस प्रोग्राम इज

0: एजीएस ट्यूबलाइट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एजीएस ट्यूबलाइट बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नात्रा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
6: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, तब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: एयर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: दिस प्रोग्राम इज

0: location for maximum music.
1: For the first time in Pakistan and the home appliance industry, Higher AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Higher AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cash back of up to 5,000 rupees. Hurry, the offer is valid for a limited time only. Higher, more creation, more possibilities.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: Higher No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, No Worries.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
3: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
4: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
3: HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
5: Cool King.
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा.
7: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाब सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या?
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
2: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
3: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
2: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
1: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0001।
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
7: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।

0: टेंशन कई को लेता जानी सब मिलेगा सब मिलेगा।
1: कर बैठ खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: थिंकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555-0011।

0: अगर कभी मेरी याद आए।
1: Be ready for a great journey
2: with Melodious Companion.

0: Broadcasting from the highest tower with the lights on, so planes won't hit it.
1: FM 100.
2: 100.
3: It's 1 p.m. The Shine Check is brought to you by
4: Yellow by Jazz Cash.
5: अभी Jazz Cash app download करो और Yellow के through payment करो.
6: एक दो तीन Yellow. एक दो तीन Yellow.
7: ये क्या है भाई?
5: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
4: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैज कैश.
5: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
8: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ. तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं. MCB बैंक फॉर लाइफ.
9: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतलका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
12: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
13: जुमातुल मुबारक की खुसूसी नशियात आप सुनेंगे सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से.
14: कराची, लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. अब आप सुनेंगे FM 100 पर मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज जुमा.
15: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

أشهد أن لا

محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل اعتدلوا الله أكبر.

0: الله سمع الله لمن حمده
1: ربنا

स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया। FM

0: FM 100. It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Yellow by JazzCash.
2: Abhi JazzCash app download karo aur Yellow ke through payment karo.
3: 1, 2, 3 Yellow. 1, 2, 3 Yellow.
4: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो JazzCash पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय JazzCash।
2: अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स JazzCash ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे JazzCash से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए JazzCash है ना।
0: FM 100.

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें। श्वाब सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाब सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: FM
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाए।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए रब्ता 0333 555 0011।

no DJ. Here they are. Just music to make you rock.

0: थिंकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: सिवान स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
3: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औक़ात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए? अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाजत देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड ना होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आपका अकाउंट फॉल कर देता है, बशर्ते कि सिम कार्ड आपके पास हो। सिम कार्ड सबसे अहम है। इजाफी तौर पर आप अपने नंबर और मसले की तफसील के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट को ईमेल भी कर सकते हैं। राब्तों को फौरी इतला दें। अकाउंट बहाल होते ही अपने तमाम राब्तों को पैगाम भेजें, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था, बराह करम पिछले किसी भी पैगाम या दरख्वास्त को नजरअंदाज करें। इससे आपके दोस्त और खानदान मजीद नुकसान से बच सकते हैं। अब देखते हैं मुस्तकबिल में हैक होने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी फॉलो करें। सेटिंग्स, अकाउंट, 2-स्टेप वेरिफिकेशन या एक 6 हिंसों का पिन सेट करें जो सिर्फ आपको याद हो। ईमेल एड्रेस जरूर शामिल करें। ईमेल शामिल करने से पिन दोबारा सेट हो सकता है। अकाउंट तेजी से फॉल हो जाता है, हैकिंग के इम्कान कम हो जाते हैं। तस्दीकी कोड कभी किसी के साथ शेयर न करें, चाहे पैगाम दोस्त का हो या किसी अदारे के नाम से हो। कोड शेयर करना सीधा अकाउंट हैक होने के बराबर है। जाली लिंक्स और ऑफर से बचें। मुफ्त इंटरनेट, इनाम, सरकारी या बैंक के जाली पैगाम से होशियार रहें। ऐसे लिंक्स पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस चेक करें। सेटिंग्स, लिंक डिवाइसेस, अगर कोई नामालूम डिवाइस नजर आए तो फौरन लॉग आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं, बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।

Hard. Bulldog.

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100। इरशाद बारी ताला है, जानदारों में सबसे बदतर अल्लाह के नजदीक वो लोग हैं जो काफिर हैं, सो वो ईमान नहीं लाते। सूरह अनफाल।
2: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
5: ये क्या है भाई?
6: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन, ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
7: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
6: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।

0: जस्ट कैश।
1: अभी जस्ट कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम
7: एंड
9: कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
7: एंड
10: अब करो सफर टेंशन फ्री, क्योंकि जैस कैश है ना।
7: एंड
2: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एंड
11: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
12: दिस इज योर म्यूजिक।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: Enjoy your favorite music, uninterrupted.
3: Enjoy your favorite music, uninterrupted.
2: You're listening FM 100.

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
2: ये क्या है भाई?
1: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
5: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
4: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: MCB1 करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: One station, 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: किसने कहा था पैसे

0: Whoa!
1: Hit music station.
2: And now,
3: music continues.
4: Pakistan.

0: at 6 p.m. The Shine Check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account. Jahan khaar, wahan HBL.
3: Cool King.
4: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
5: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: HBO Freedom account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
6: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
5: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप ए सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉप ए सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
9: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाए।
10: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
11: दिस इज योर म्यूजिक।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
3: Cool King.
4: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
8: ये क्या है भाई?
7: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
10: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां खा वहां HBL।
1: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।

0: ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
6: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144Hz पिक्चर क्वालिटी शानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0011।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औक़ात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फ़ालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। अगर आपकी शिकायत किसी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से मुतालिक है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके पास वो शिकायत नंबर मौजूद हो जो आपको ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराते वक्त फराहम किया गया था, क्योंकि पीटीए के पास शिकायत के इंदराज के लिए ये नंबर देना जरूरी होता है। अब कंप्लेंट नंबर दर्ज करें और कंप्लेंट समरी में अपनी शिकायत की तफसील लिखें। जरूरत के तहत मुतल्लिका फाइल भी मुंसलिक की जा सकती है। इसके बाद कवायद और जवाबित कबूल करते हुए अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर सबमिट कर दें। शिकायत सबमिट होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मौसूल होगा, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए पीटीए के टोल फ्री नंबर 0800-55055 पर राब्ता करें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
4: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: Khan, Multan.

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
3: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
2: HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
4: Cool King.
5: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा.
6: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
7: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर. इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
2: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ.
2: HBL Freedom Account, जहां खाब वहां HBL.
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी. जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ.
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
10: ये क्या है भाई?
9: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
11: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
9: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.
12: किसने कहा था पैसे बचा?

0: जा।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई इसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है, जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि यह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। सूरह यूनुस।
2: FM 100. 100. 100. 100. 100.

0: हैं आप चार्जे रक्षाकारी और आप सुन रहे हैं FM 100 पर प्रोग्राम सिवाच तुम, जो कि कई सालों से पेश किया जा रहा है, जिसमें मशहूर माहिरे इल्मे नुजूम डॉक्टर जलील असलम आपको सितारों के मुताबिक जिंदगी की उलझन से निकलने का तरीका बताते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक जैमस्टोन के जरिए, एक पत्थर के जरिए वो एक नगीना ही आपको हीलिंग देगा, जो कि सिवाच स्टोन से मिलेगा। सिवाच स्टोन का नंबर है 0333555001 0333555001 0334222312 0333555001 0334222312 0333555 0011 माहिरे इल्मे नुजूम डॉक्टर जलील असलम आपके हाथों की लकीरों की मदद से आपकी मुश्किल को भांप लेते हैं। यूं वो आपको सिवाच स्टोन का लकी जैम स्टोन बताकर रास्ते आसान बना देते हैं। तो अभी राब्ता कीजिए इन दिए गए नंबरों पे।
1: देखो, मैं आपसे हर रोज सितारों के बारे में गुफ्तगू करता चला आ रहा हूँ। अपने हाथों की लकीरों पर तवज्जो जरूर दिया करें, जिन हाथों पर मैं बात कर रहा हूँ। हाथ किस्मत की तकदीर लिए बैठे रहते हैं और उसको खूबसूरत बनाने के लिए आपको अपने हाथों की लकीरों पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। जिन हाथ का जिक्र मैंने किया, इस हाथ को

कितने कैरेट का मरजान पहनना है, किस फिंगर में पहनना है, और आप क्या चाहते हैं, बुलंदी को छू जाना चाहते हैं या समंदर और दरियाओं को चीर कर उसकी तह में जाना चाहते हैं, या पहाड़ों की बुलंदी को छूना चाहते हैं या चांद को करीब लाना चाहते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा आपके स्टार्स के मुताबिक, आपके जायचे के मुताबिक, जो भी चाहते हैं आप हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं। आपको मरजान पत्थर को पहनना है और ये रिवाज स्टोन से आपको मिलता चला जाएगा। मरजान की बहुत सारी इकसाम है, हर मरजान आपने नहीं पहनना, इसकी बहुत सारी किस्में हैं, आप पर कौन सी किस्म सूट करती है ये मैं आपको बताऊंगा, आपने कौन सा वाला कौन सा मरजान पहनना है ये मैं बताऊंगा। मरजान वाइट में भी

0: آپ اپنی امی کے سر درد پہ کھو جاتی ہیں. مانا کہ آپ کو اپنی امی سے بہت زیادہ پیار ہے, ہونا بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ حد سے زیادہ پیار کرنے لگ پڑی ہیں. آپ کے تین بچے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ کے میاں ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آپ کے میاں آفس میں بیٹھ کر وہ جاب کرتے ہیں, آپ کے میاں گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, آپ کے میاں آفس میں بیٹھ کر سارا دن پریشانی میں رہتے ہیں کہ میری بیوی کو کیا ٹینشن ہے, میں اپنی بیوی کے سب کچھ زیادتی تو نہیں کر رہا. وہ ہر روز ان باتوں میں پریشان رہتی ہیں, رہتے ہیں آپ کے میاں. لیکن حریا, آپ اپنے میاں کو بھی اپنے سے دور کر دیں گے. اپنی امی سے لمبی لمبی گفتگو کرنا بند کر دیں, ہر روز اپنی امی کے ساتھ ان کے معاملات کو لے کر ہائے ہائے کرنا بند کر دیں. اور سکون لینا ہے آپ کو, سیواج سٹون کا یلو اگیٹ پہننا ہے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں, یلو اگیٹ. اور یلو اگیٹ صرف 11 کیرٹ کا ہونا چاہیے. اور سیواج سٹون 0333-555-00-11 پہ کال کریں گے تو سیواج سٹون آپ کے دروازے پہ ہوگا. آپ یہ سٹون پہنے, آپ کو سارا دن پہنے, رات کو سوتے ہوئے آپ اس کو اتار دیا کریں. آپ کہیں گی کہ میرے اندر ایک ہیلنگ پاور آ گئی, یہ جیم سٹون ہیلنگ پاور ہے, یہ قدرتی نوادرات ہیں, آپ کے اندر ایک ہیلنگ پاور آئے گی اور آپ پرسکون ہوتی چلی جائیں گی, گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا. آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اپنے کوشچن مجھے بھیجے, ہاتھ کی لکیریں بھیجی, کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو, کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو, آپ کی تکلیف صرف آپ کی امی ہے. امی سے بہت پیار کریں, لیکن امی کے معاملات کو لے کر ان کے اندر گھس نہ جائیں, اپنی امی کے معاملات میں گھس نہ جائیں. جتنا آپ ان کے اندر انوالو ہو چکی ہیں, آپ کا گھر اپنا خراب ہونے کی پڑے. اچھے ہسبینڈ ہاری کو نہیں ملتے, اپنے ہسبینڈ کو اپنے سے دور نہ کریں. اور بچوں کی تربیت بہت اچھی کریں, ان پہ توجہ دیں. امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتیں سن کے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گی, اللہ نے کے بعد.
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زوڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی. اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یو ٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یو ٹیوب کے لیے آپ کو یو ٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یو ٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور ایک سیکنڈ میں ایک کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی یہ آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
0: 20 مارچ کو سورج برج ایریز برج حمل میں داخل ہوتا ہے. 20 مارچ کو ان دنوں اور راتوں کی لمبائی یکساں ہوتی ہے. در حقیقت نجوم کا نیا سال, یہ جو نجوم ہے نا, نجوم کا نیا سال, یہ نیا سال ہوتا ہے کیونکہ سورج 12 برجوں میں سے اپنے سفر کا آغاز اس برج میں کرتا ہے, اس برج سے کرتا ہے, اور ہر ماہ میں ایک برج کا سفر پورا کرتا ہے. اس برج کے تحت سورج کے تمام زبردست قسم کے اثرات کو بہاری کہا جاتا ہے. इस बुज में से सूरज के सफर के दौरान जो लोग पैदा होते हैं वो बहुत तेजी से चलते हैं और उनके कदमों में बड़ी लचक होती है। एरीज वालों से बात कर रहा हूं। इस मौसम में सारे आलम में बहुत तबीयत जिंदगी पैदा होती है, एक बिदार होती है। बीज फूटते हैं, कलियां चटकती हैं, दरख्तों पर फूल आते हैं, घास और कयारियां सरसब्ज हो जाती हैं, परिंदे गीत गाते हैं, बहुत मजेदार गीत गाते हैं, और इंतहाई मुर्दा दिल किस्म के लोग भी बाहर का कुछ ना कुछ लुत्फ महसूस करते हैं। स्प्रिंग सीजन, इस मौके पर सारे आलम की फिजा हयात बख्श आवामिल में मामूल बन जाती है, मामूल हो जाती है। बुरझमल के लोग किसी शख्स या किसी मकसद के हसूल से अपनी वफादारियां वाबस्ता कर दें तो फिर इस उस शख्स और इस मकसद के ये सरगर्म हामी और बहुत बुलंद लोग बन जाते हैं। ऐसे लोगों को जिंदगी की अक्सर परेशानियां और अपने अमल और फैसले में हद से ज्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा करने के नतीजे में काफी नतीजे भुगतना पड़ते हैं। जज्बाती ना हो, जल्दबाज ना हो, जल्दबाजी गिरा देती है। ऐसे लोगों में ठंडे दिल से मामलात को जांचने, सुकून के साथ गौर करने और सब्र और तहम्मुल के साथ काम करने की सलाहियत बढ़ती चली जाती है। अगर आप भी एरीज हैं तो 20 मार्च में जो पैदा होते हैं वो अपने पर गौर करें, अपने आप को बेहतर करें। और यूं तो हर सितारा दायरतुल बुरूज के गिर्द घूमता रहता है और दायरतुल बुरूज सितारों की एक कहकशां है। हर शख्स का ताल्लुक किसी न किसी सितारे से है। अगर आप सितारों को समझे तो चूंकि साइंस के जमाने में हम आ चुके हैं, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो साइंस भी सितारों को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करती है और इसमें अपने जिस बुर्ज में आप रहते हैं उस बुर्ज को रोज स्टडी करें, हर रोज अपने आप को देखें, आपको सितारा क्या कहता है, आज आपका दिन कैसा गुजरेगा, आपने जो कर दिया वो कर दिया, आज क्या हो रहा है। अब अपना पास्ट में जाएं ना फ्यूचर में जाएं, आप प्रेजेंट में रहें। जो लोग प्रेजेंट में रहते हैं वो प्रेजेंट में रहने वाले लोग हमेशा तरक्की कर जाते हैं। आपने आज का दिन का आगाज कैसा करना है, आप उठे हैं सुबह, आप 8 बजे जिंदगी का आगाज करें, 8 o'clock पे जब जिंदगी का आगाज करेंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग यू गोइंग टू योर लाइफ एंड योर सेंस ऑफ लाइफ, जब इस तरह जिंदगी को लेकर चलेंगे पूरे 8 बजे, तो आप 8 बजे सफर का आगाज कर रहे हैं, आप हिम्मत से निकल रहे हैं, आपने खुद को बहुत खूबसूरत अंदाज में घर से बाहर निकाला है, तैयारी करके अपने ड्रेसअप होके, गुड ड्रेसअप होके अपने आप को नफासत में लिए, खुशबू लगाकर आप जिंदगी के आगाज को लेकर घर से बाहर चल रहे हैं। इस बात को सोचकर निकले कि आज का दिन मेरा कल के दिन की निस्बत बहुत आगे जाएगा। कल मिस्टेक हुई, आज भी मिस्टेक नहीं करूंगा, कल खता कर किया, आज खता नहीं करूंगा, कल ना जाने मैंने वक्त को बहुत जाया किया, आज वक्त जाया नहीं करूंगा, आज उन दोस्तों से नहीं मिलना जो खुद भी वक्त जाया करते हैं और मेरा भी वक्त जाया करते हैं, आज उनको नहीं मिलना, आज मैंने सिर्फ अपने ट्रैक पे रहना है। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में पूरा टाइम देना है और जॉब को इतनी खूबसूरती से अदा करना है कि जॉब को ये सोच के अदा करना है, आज मैं जहां पे जॉब कर रहा हूं मैंने इस जॉब में मैंने जीएम की पोस्ट पे जाना है, जीएम से सीएम की पोस्ट पे जाना है, सीएम से सीईओ बन जाना है, सीईओ से मैंने इस कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाना है। इस सोच के साथ आप जब 8 बजे घर से निकलेंगे और जिंदगी का आगाज करेंगे तो मेरी बात याद रखें, अपनी सीट पर बैठकर भी मेरी बातें बार बार गौर से सुने, आपने आज को सोचना है, आज को देखना है, जो कल हो गया उसे भूल जा, जो आने वाला है उसकी सोच खत्म कर दे, जो हो रहा है उसमें रह, उसी में रहेंगे तो आपका आज ही खूबसूरत रहेगा। हर रोज आज को लेकर चले, हर रोज अपने आगाज जिंदगी का आज से करें, कल को भूल जाए, गलतियां हो गई माफी ले लें, जो आने वाला है उसमें गलती में जाना ही नहीं है, आज के दिन रहना है और आज को यूं जब लेकर चलेंगे तो आज का दिन ही आपको बुलंदी पे ले जाएगा। आज का दिन सूरज के आवाज के साथ ही सूरज जू जू बुलंद होगा, आप बुलंदी को छू जाएंगे। जब सूरज गुरूब होगा आप खामोशी से घर आए, आराम करें, खाना खाएं, फैमिली को टाइम दें और फिर अगले दिन की तैयारी शुरू कर दें। है ना बात मन पसंद जो मन में उतर जाए।
1: शिवाज स्टोन से रابطہ करने के लिए आपको शिवाज स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। शिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉर्डिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं, और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए शिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवास की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं। इनकी कॉल नहीं मिल पाएगी, वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके का ये होगा कि आप जो शिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं शिवाज स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं। जैम स्टोन उन पत्थरों को कहा जाता है जो कुदरती नवादरात है, ये पत्थर है इनको कहा जाता है। बूट वॉट्स एक ऐसा जैम स्टोन है कि पांच खवातीन की डिलीवरी करीब होती है और उनके पेन नहीं होती। बूटवाश स्टोन सिर्फ 15 कैरेट का अगर बालों में बांध दिया जाए ना, पीछे बाल में बांध के खातून के बाल को लटका दिए बाल में बांध दिया जाए तो पेन इतनी फास्ट होगी, ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, इतनी तेज पेन होगी कि डिलीवरी ऑन द स्पॉट डिलीवरी हो जाएगी। अब समटाइम पेन खत्म, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद भी पेन बहुत रहती है। बूटवाश स्टोन को अगर उस खातून के लेफ्ट पांव में, टांग पे, लेफ्ट पांव में नीचे टखने के पास बांध दिया जाए, किसी चीज में, किसी धागे में बांध दिया जाए तो ये पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और खातून को लगेगा कि जैसे बिल्कुल उन्हें ना पेन हुई और बहुत नॉर्मल डिलीवरी होगी। वाना में व्हाइट कलर है, हॉर्स में ब्लैक कलर है, वाना में ग्रीन कलर है, हॉर्स में ऑरेंज कलर है, वाना में पिंक कलर है और बूट्स में क्या कलर है, आप हैरान होंगे। अब ये पत्थरों के नाम हैं, इनके कलर्स हैं, आप चाहते हैं कि इनको हम कलर्स के मुताबिक इस्तेमाल करें तो शिवाज स्टोन एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आप अपने मतलब के जैम स्टोन बनाए, अपने मतलब कर लें। और जो बहुत से लोग जैम स्टोन का सेट पहनते हैं, प्लीज बीवेयर, यू प्लीज प्लीज बीवेयर, आपने इस तरह नहीं करना। बहुत सी खवातीन रूपी की स्टेट पहन लेती है, आपने इतने सारे रूपी लटका लिए, आपने अपने गले में एक मुसीबत डाल ली, और आपने जब गले में मुसीबत डाली तो आप याद रखिएगा ये मुसीबत नहीं है, ये पत्थर पर पत्थर है, आप पत्थर पर अपनी नसीब खराब कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बूट पाना के बहुत से कलर हैं, बूट पाना इज्जत देता है। अब व्हाइट कलर पत्थरों को पास रखने से इज्जत में इजाफा होता है, हर व्हाइट कलर नहीं जो शिवाज स्टोन रिकमेंड करेगा। और शिवाज स्टोन इदारा कौन सा है, ये शिवाज स्टोन एक ब्रांड है जैम स्टोन का, और 0333-555-0011 पे आप जाएंगे आपको शिवाज स्टोन मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि आप चाहते हैं कि आपको इज्जत मिले, आपको लोग खुशियों से मिले, बड़ा वकार हो, बहुत प्रेस्टीजियस पर्सनैलिटी के बच्चे, तो उसके लिए आपको बूट्स पाना अगेन अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर पे पहने, और इसको पहनने से आप हैरान होंगे कि आपके लोग इर्द गिर्द घूमने लग पड़े हैं। 15 कैरेट का तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी। जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको इज्जत नहीं मिलती, लोग समझते हैं, लोग उनको समझते ही नहीं है, उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। और किसी महफिल में आप चाहते हैं लोग आपको प्रेस करें, बुजुर्गी और बड़े बड़े बुजुर्ग जब होंगे या कोई हुक्मरान भी वो होगा वो भी आपको मिलेगा। हजाब को तो मतलब होता है पर्दा और संग पत्थर, यानी पत्थर पे हजाब
0: यस, पत्थर का नाम। संगे हजाब क्या है? संगे हजाब यूं तो ब्लैक कलर में पहनेंगे तो व्हाइट हाथ अगर होंगे तो ब्लैक को कमाल कर देगा। और अगर आप कहते हैं संगे हजाब व्हाइट में चाहिए तो ये है संगे हजाब व्हाइट में। ये संगे हजाब व्हाइट कलर में है। अब ये व्हाइट कलर में इस तरह से है कि आप इसको राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहने, आपको ऐसी इज्जत मिलेगी, ऐसी इज्जत मिलेगी। अरे भाई, आप कहेंगे कमाल हो गया, इज्जत ना मिली, हम तो हीरो बन गए। यस, अगर आप हीरो बनना चाह रहे हैं तो संगे हजाब को राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहन लें। ये संगे हजाब आपको हीरो बना देगा, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो कर देगा और लोग कहेंगे क्या हंक पर्सनैलिटी है आप भागते चले जा रहे हैं, कमाल कर दिया आपने। ये इस पत्थर में कमाल पाया जाता है और ये आपको शिवाज स्टोन ही से मिलेगा। शिवाज स्टोन से आप खूबसूरत रिंग पे बनवाएं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत इज्जत मिले, आपको बहुत वकार मिले, तो आप संगे हजाब को पहन लें। अब संगे हजाब इसमें अट्रैक्शन बहुत पाई जाती है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो शर्कान हो जाता है, वो संगे हजाब को गले में पहने और लंबा लॉन्ग करके गले में पहने, काले धागे में धागा कम होता चला जाएगा, संगे हजाब ऊपर होता जाएगा। और मेडिसिन आप जरूर लें, लेकिन ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे काम करेगा। और इसमें ये मुसखरात भी है। देखिए, ये मुसखरात ऐसे है कि इसमें कमाल कितना बड़ा दिखाया गया। ये इसकी ये जो मोटाई है, अगर ये पहनते तो मुसखरात क्या, अट्रैक्शन पैदा करना, पब्लिक को अपनी तरफ करना और लोग आपको तकते चले जाएंगे। और आपने जब इसको अपने फिंगर में पहना होगा तो क्या कमाल लगेगा आपके फिंगर में। स्टोन एक ऐसा इदारा है जहां से आप अपना जेम स्टोन ले सकते हैं। शिवाज स्टोन एक ऐसा ब्रांड, आप शिवाज स्टोन का जेम स्टोन इस्तेमाल करें। ये शिवाज स्टोन ब्रांड बिल्कुल रियल जेम स्टोन है और शिवाज स्टोन आपके अपने मुल्क में मौजूद है। आप पाकिस्तान में शिवाज स्टोन को रिसीव करें, आप इंग्लैंड से शिवाज स्टोन को ले सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से शिवाज स्टोन को ले सकते हैं, आप दुबई से भी शिवाज स्टोन को ले सकते हैं। इसी तरह आप शिवाज स्टोन का जैम स्टोन, शिवाज स्टोन एक ब्रांड है, ये बिल्कुल रियल जैम स्टोन है। अब वूड वॉर्स एक जैम स्टोन ऐसा है कि किसी खातून के पेन नहीं हो रही, डिलीवरी का वक्त बहुत करीब आ गया है, पेन नहीं हो रही, वूड वॉर्स स्टोन तकरीबन 15 कैरेट का उस खातून के बालों में बांध दें और बाल को हैंग लटका दें, आप देखिएगा स्पॉन्टेनियसली उसकी पेन शुरू हो जाएगी और डिलीवरी में लेबर रूम में आप पहुंचेंगे, वो चीखे मारती हुई लेबर रूम तक पहुंचेगी और ऑन द स्पॉट डिलीवरी कंप्लीट। अब डिलीवरी के दौरान आप चाहते हैं उसकी पेन, अब उसकी बहुत हो रही है और पेन को वो खत्म करना चाह रही है, पेन को खत्म करने के लिए लेफ्ट बाजू में, लेफ्ट टांग में टखने के पास बूट वॉट्स जैम स्टोन को आप टखने के पास नीचे लेफ्ट में बांध दें किसी धागे में, या हो सके तो सिल्वर की चेन में बांध दें, उसकी जो पेन बॉडी में हो रही है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आप चाहते हैं डिलीवरी नॉर्मल हो, बूट्स वॉट्स जैम स्टोन को नाप पे, इसको धुन्नी कहा जाता है, इस पर बांधते नॉर्मल डिलीवरी, क्या कुदरती नवाद रहता है।
1: शिवाज स्टोन से राब्ता करने के लिए आपको शिवाज स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। शिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉर्डिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर डी आर जलील असलम ऑफिशियल, इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए सिवाच स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए और अपनी तकदीर को परवास की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं। और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीकेकार ये होगा कि आप जो सिवाच स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें, आप वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं सिवाच स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं।
0: संगे सुलेमानी पत्थर, ये पत्थर रूहानियत में बहुत मकबूल है। रूहानी लोग संगे सुलेमानी को बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? इसकी अंगूठी पहनते हैं संगे सुलेमानी की, और इसको पहनने से उनका ये कहना है कि सूफीज्म में बहुत कुर्बत मिलती है। ये कुर्बत है, संगे सुलेमानी पहनते तो सूफीज्म करीब से करीब तक करता चला जाता है। इस पत्थर की निस्बत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से दी जाती है। इसका जो इसको सूफी माला की जरिए मालाएं पहनते हैं, जो सूफी लोग दरवेश लोग हैं अक्सर इसकी माला पहनते हैं, गले में उन्होंने माला पहनी होती है, दरवेश भी इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसा जैमस्टोन है कि आपको बुलंदी की तरफ ले जाता है, बुलंदी छूते चले जाएं और तरक्की करते चले जाएं। ये संगे सुलेमानी में खूबी है। अब आप मुझे पूछना चाहेंगे कि संगे सुलेमानी कहते किसको है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि संगे सुलेमानी किसको कहते हैं। ये है संगे सुलेमानी, और संगे सुलेमानी मुख्तलिफ कलर में पाया जाता है, इसकी 24 इकसाम है। ये संगे सुलेमानी है। आपने कौन सा संगे सुलेमानी पहनना है आपको खुद नहीं लेना, आपने स्पेशलिस्ट जैम स्टोन स्पेशलिस्ट से पूछना है, और मैं डॉक्टर जलील असलम जैम स्टोन स्पेशलिस्ट हूं, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा स्टोन किस वक्त पहनना है, कितने बजे पहनना है। ये संगे सुलेमानी आपको सूफीज्म के करीब कर देगा, संगे सुलेमानी आपके मन को आपके मन में ही डुबो देगा, संगे सुलेमानी आपकी काया को यूं पलटेगा, आप कहेंगे अपने ही मन में डूबकर पाले सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, और अपनी जिंदगी को यूं बदलते चले जाए। मैं चाहता हूं कि आप जैम स्टोन को पहने, और जैम स्टोन से अगर आपको जॉब नहीं मिलती आप जैम स्टोन पहने आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप जॉब को बढ़ाना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, आप जैम स्टोन पहने आपकी जॉब में बढ़ावा होता चला जाएगा। आप चाहते हैं कि आप इतनी तरक्की करें आप चमकते दमकते नजर आए लोगों को, चमकना दमकना भी जैम स्टोन का कमाल है। ये ऐसी कुदरत की नवादरात है, कुदरत ने इनको माइंस में पैदा किया है। आप देखिए कितनी माइंस है, अगर आप गौर करें पूरा बलोचिस्तान इन माइंस से भरा पड़ा है, अगर आप देखें साउथ अफ्रीका भरा पड़ा है, अगर आप देखें कीनिया भरा पड़ा है, अगर आप देखें अरब के बहुत से कंट्रीज अरब में गल्फ में जैम स्टोन बहुत ज्यादा है। ये जैम स्टोन क्या कुदरत ने कमाल कर दिया कि ये जैम स्टोन आपकी काया को पलट सकते हैं, आपके नसीब बदल सकते हैं। आपकी शादी नहीं होती आप जैम स्टोन इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। क्या है जिसकी कोई भी मुराद पूरी नहीं होती वो संगे मुराद को पहन ले। संगे मुराद को आपने 13 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहना है, संगे मुराद को ये आपकी मुरादें पूरी करता चला जाएगा। पर्टिकुलरली वो लोग जिनकी शादी नहीं होती वो संगे मुराद को पहने, संगे मुराद को राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है, और ये सिवाच स्टोन से मिलेगा संगे मुराद। आप संगे मुराद कहते किसको है? संगे मुराद वो जैम स्टोन है जो कि आपके माल प्ले को हल करेगा, इसको संगे मुराद कहते हैं। ये संगे मुराद है। अब संगे मुराद आप ये पहनेंगे, आप राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहने, लेकिन कितने कैरेट का पहनना है? आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा कैलकुलेशन होगी न्यूमरोलॉजी के जरिए, और इसको के जरिए इस तहारा के जरिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि संगे मुराद कितने कैरेट का पहनना है और किस उंगली में पहनना है, और ये सिवाच स्टोन से ही लेना है। सिवाच स्टोन एक जैम स्टोन का ब्रांड है, आपने वहीं से लेना है। इसको जब पहनेंगे और फिर इसके टाइमिंग होंगे और इसकी खुराक होगी। आपने इस पत्थर को क्या खुराक देनी है? संगे मुराद को। संगे मुराद जिसका रिश्ता नहीं हो पाता, जिसको रोज ये कहा जाता है जादू हो गया, टूना हो गया, बंदिश हो गई, तमाम बंदिशों को ये संगे मुराद खत्म कर देगा, और संगे मुराद यूं खत्म करेगा कि बिल्कुल आपने इसको पहना है 21 दिन के अंदर अंदर आपका रिश्ता आएगा, और बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, एक ही रिश्ता आएगा और वहीं पर डन हो जाएगा, और आप हैरान होंगे कि क्या ये संगे मुराद है। संगे मुराद ये जैम स्टोन है, संगे मुराद बाग कमाल पत्थर है, ये माइंस में पाया जाता है, और कॉस्टिक माइंस हैं, ये कुदरती नवादरात हैं, ये ऐसी कुदरती नवादरात है जिस पे इंसान की कोई औकात नहीं, इंसान कुछ भी नहीं सोच सकता, इंसान ने बिल्कुल नहीं बनाया इन पत्थरों को, किसी मशीन में नहीं बने, ये कुदरती माइंस में बने।
1: शिवाज स्टोन से राब्ता करने के लिए आपको शिवाज स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है। शिवाज स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉर्डिक और इसको इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी, और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-2312। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप YouTube पर भी मुझे देख सकते हैं, और YouTube के लिए आपको YouTube पे जाना है डॉक्टर DR जलील असलम ऑफिशियल। इस पे आप जाएंगे तो आप YouTube पर भी मुझको देख सकते हैं। आप सुनते चले जाइए शिवाज स्टोन का प्रोग्राम, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए, और अपनी तकदीर को परवाज की तरफ ले जाने के लिए। और मैं बिल्कुल एक घंटा आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूं, और आप मेरे साथ हमारी प्रेजेंटर इरम शहजादी को भी सुनते चले जा रहे हैं, और इरम शहजादी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सुनते चले जाइए, अपने क्वेश्चन फटाफट लिखते चले जाइए जो क्वेश्चन करने हैं, और एक सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल लाइव लेते चले जाएं। जिनकी कॉल नहीं मिल पाएगी वो बिल्कुल हमसे नाराज ना हो, उसका तरीके कर ये होगा कि आप जो शिवाज स्टोन के जो नंबर आपको बता रहे हैं उन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजें इस डिटेल के साथ, और मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो आपका वॉइस नोट बिल्कुल लाइव प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं प्रोग्राम में आपकी ये आवाज या आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं आपको जवाब भेज दूंगा। आप बिल्कुल अपना वॉइस नोट भेज सकते हैं शिवाज स्टोन के इन नंबरों पे जो नंबर आपको बार बार बताए जा रहे हैं। जी इरम शहजादी, बड़ी तेज लाइनें ब्लिंक कर रही हैं, और लोगों के बहुत से क्वेश्चन आ चुके होंगे, लोग बात करना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में फोन्स की लाइनें बड़ी स्पीड से ब्लिंक कर रही हैं, तो मेरा ख्याल हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब हम क्वेश्चंस लेते हैं कि लोग क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, और फौरी अपना सवाल भेजते चले जाएं। आप एक सेकंड में मैं आपको एक जवाब दूंगा, लेकिन डिटेल प्लीज जरूर देनी है। डिटेल क्या है? आपका नाम, आपका निकनेम, आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ अपना नाम बता दें और सिर्फ अपनी वालदा का नाम बता दें। आप जिस नाम से ज्यादा बुलाए जाते हैं सिर्फ मुझे वो बता दें, और आप पैदा कहां हुए थे ये बता दें, किस इलाके में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। मैं आपको एक सेकंड में आपके एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, और अगर आपकी लाइन ना मिल सके तो नाराज नहीं होना, आपने फौरी तौर पर शिवाज स्टोन के नंबर पर रब्ता करना है, वॉइस नोट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, और उसके लिए आपको 0333-555-0011 को डायल करना है, और दूसरा नंबर 0334-222-312 को आप डायल करेंगे और वॉइस नोट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं फौरी तौर पर आपको जवाब देता चला जाऊंगा। जी चलिए, हमारा पहला कॉलर कौन है?
2: सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मेरी तारीख है पैदाइश 15 दिसंबर 1999 है, मुझे कौन सा पत्थर सूट करेगा प्लीज बताइएगा।
1: मोहम्मद उमर साहब, आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है उसमें तो आपको स्टोन शिवाज स्टोन का फिरोजा ही है, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है, तबीयत में बेचैनी बहुत रहती है, इरिटेट चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आपको होता है। आप फौरी तौर पर शिवाज स्टोन का टर्कवाइज पहने, टर्कवाइज आपने पहनना है 11 कैरेट का, इसको आपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहनना है। इसको पहनते ही आपने सदका भी देना है, सदका मैं आपको बताऊंगा। जिस वक्त आप शिवाज स्टोन से स्टोन लेंगे तो एक पेपर आपको लिखा हुआ मिलेगा, اس کے مطابق آپ نے اس کو صدقہ دینا ہے, اور اس کو رات کو کس چیز میں ڈالنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس میں لکھ کے بھیجوں گا. یہ آپ سٹون پہنیں اور یہی آپ کے لیے سب سے بیسٹ سٹون ہے اور اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے. سٹون کو رات کو آپ نے اتار کر سونا ہے, پہن کے نہیں سونا. اوکے, اور یہ سیواج سٹون سے مل جائے گا آپ کو. سیواج سٹون کا نمبر 0333555001.
3: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میں افتخار احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. میری تاریخ پیدائش 26 فروری 2000 ہے. مجھے غصہ بہت آتا ہے, کوئی حل بتائیں.
1: افتخار احمد صاحب, آپ نے لاہور سے کال کی ہے, آپ کو غصہ بہت آتا ہے. 26 فروری آپ کی پیدائش ہے اور ستارے میں بھی غصہ ہے. آپ کا ستارہ ایسا جیسے ایک بیوروکریسی کرنے والا ستارہ ہے, کہ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بس میری ہی حکمرانی ہو, میں جو چاہوں وہی ہو, اور میرے علاوہ اور کچھ نہ ہو, جو میں کہتا ہوں بس وہی بات میری مانی جائے. ایسا پاسبل ہے نہیں افتخار صاحب. اب زمانہ چینج ہو گیا, اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا, ایسا کوئی کر بھی نہیں سکے گا. اس لیے آپ کو غصہ بہت آتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں. غصے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو دانا فرہنگ پہننا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کو سیواج سٹون کا مون سٹون پہننا ہے. یہ دو سٹون پہننے, دانا فرہنگ کو آپ نے رائٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے, مون سٹون کو آپ نے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہننا ہے. جب آپ ان کو پہنیں گے آپ کو غصہ بالکل ختم ہو جائے گا. آپ نے ان کو 40 ڈیز تک پہننا ہے, لیکن رات کو اتار دیا کرنا ہے اور پھر صبح پہن لیا کرنا ہے. 40 ڈیز کے بعد پھر آپ چاہیں تو ایک سٹون پہن سکتے ہیں, پھر آپ دانا فرہنگ پہنیے گا اور آپ کا غصہ بالکل بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھیے گا, یہ آپ کو سیواج سٹون سے مل جائیں گے. سیواج سٹون کا نمبر ہے 0333555001.
4: ہلو, السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. جی السلام علیکم پاکستان.
4: وعلیکم السلام.
5: جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
4: میں رمضان بات کر رہا ہوں.
5: کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
4: لاہور سے.
5: جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
4: تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری عمر 26-27 سال کے قریب ہو گئی, لیکن شادی کا کوئی نظام جو ہے نا نہیں بڑھ رہا ہے.
5: اچھا جی, اپنی مدر نیم بتائیے گا.
4: مدر دولت بی بی.
5: دولت بی بی, اور اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں. اوکے جی, میرا خیال ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے.
6: جی میں رمضان صاحب, آپ کی نام اور آپ کی مدر نیم کے مطابق جو میں آپ کا ذائچہ بھر آ کے بیٹھا ہوں, اس کے مطابق اتنی چھوٹی سی عمر ہے آپ کی. ابھی تو لوگ آج کل تو لوگ 50 سال کی عمر میں جا کر شادی کرتے ہیں.
5: ان کے نزدیک انہوں نے کہا میری 26-27 سال عمر.
6: جی ابھی تو آگے بڑھنے کے ٹائم ہے, شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ کے فیوچر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ بہت اچھی طرح سے آگے جا رہے ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, جو میں آپ کا ذائچہ دیکھ رہا ہوں. رمضان صاحب, آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں, ان خوبیوں میں سے شادی کا پہلو آپ ایک دم لے آئے ہیں. ابھی تو شادی میں آپ کا ٹائم لگے گا, شادی آپ کی جلدی نہیں ہوگی. آپ کی شادی 30 سال سے پہلے نہیں ہوگی, اس لیے ابھی 4 سال باقی ہیں. تو ان 4 سال میں اپنا فیوچر بہتر کر لیں, کیونکہ اگر 4 سال میں آپ فیوچر بہتر کر لیں گے تو شادی بھی آپ کی بہت اچھی جگہ پہ ہو جائے گی. اور اگر آپ ابھی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو شادی آجو باجو جگہوں پہ ہو جائے گی, پھر آپ ساری زندگی پریشان رہیں گے.
7: وعلیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام مریم افتخار ہے, میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں. میری والدہ کا نام سلمہ ہے. میری تاریخ پیدائش 23 تاریخ ہے, 3rd مہینہ 2002 ہے. میری منگنی جہاں بھی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. آپ پلیز مجھے کوئی حل بتا دیں اس کا.
6: مریم صاحبہ, آپ کا ذائچہ تو بہت ہی خوفناک اور بڑا ہاریبل نظر آ رہا ہے. آپ کی شادی تو ہو جانی چاہیے تھی 18 ایئر میں جا کے, لیکن 18 ایئر میں بہت اچھا ایک رشتہ آیا آپ کے فادر سائڈ سے آیا, اور تقریباً بات ہو گئی, منگنی ہو گئی, ڈیٹ سیٹ ہونے والی تھی, بٹ ان وین وہ رشتہ ایسے ٹوٹا کہ ان لوگوں سے رشتہ داری بھی ختم ہو گئی. اس کے ٹھیک 1.5 سال بعد پھر رشتہ ایک آیا, رشتے بہت آتے رہے. ایک رشتہ آیا جو کہ بریڈ فورڈ سے آیا, اور آپ نے شادی کے فوراً بعد بریڈ فورڈ چلے جانا تھا. ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ لڑکی باہر جائے گی, اور وہ لوگ ریڈی تھے, آپ پسند بھی تھیں, لیکن اچانک جب وہ لوگ آئے, رشتے کی بات ہو گئی, ڈیٹ سیٹ کرنے کے لیے آئے, تو ڈیٹ رکھتے رکھتے اچانک ٹیبل پہ گلاس ٹوٹا, اور گلاس ٹوٹنا ایک بہانہ بنا, اور بہانہ بنتے بنتے رشتہ بھی گیا اور گلاس بھی گیا. تو آپ کے لیے شادی یوں ہے, اس وقت ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شادی ہوتی نظر ہی نہیں آ رہی, لیکن کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں, ہم ہیں نا آپ کا اس کا حل بتانے کے لیے. آپ کو میں اس کی ریمیڈی بتاتا ہوں. ایک تو آپ سیواج سٹون کا گولڈن ٹوپاز 11 کیرٹ کا لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں پہن لیں, اور ساتھ ہی 11 دن آپ نے صدقات دینے ہیں, جو کہ جب آپ جیم سٹون لیں گی تو آپ کو صدقات میں لکھ کے بھیجوں گا, وہ آپ نے ساتھ دینے ہیں 11 دن صدقہ. لیکن وہ صدقہ یوں ہوگا کہ جیسے سورج نکلنے سے پہلے دینا ہوتا ہے صدقہ, وہ آپ کے پیرنٹس کوئی بھی گھر سے باہر جا کے رکھایا کرے گا. یہ صدقے کمپلیٹ ہوں گے, جیم سٹون پہنیں گی, ٹھیک 31 دن 31 ڈیز کے بعد تین رشتے آئیں گے. تین رشتوں میں سے جو سیکنڈ رشتہ ہوگا, سیکنڈ وہ بہت اچھا رشتہ ہوگا, آنکھیں بند کر کے وہاں رشتہ آپ ڈن کر لینا اور پرسکون زندگی گزرے گی. شادی کے 6 مہینے بعد آپ برٹش یعنی یو کے شہر لیڈز میں چلی جائیں گی اور وہاں پہ پرسکون زندگی گزاریں گی.
1: سیواج سٹون سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو سیواج سٹون کے آفس تک پہنچنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے. سیواج سٹون کا آفس لاہور میں موجود ہے, آپ کو نمبر ڈائل کرنا ہے 0333-555-0011. اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنا, اپنی لائف کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ ہاتھوں کی لکیروں پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اپنے زارڈک اور اس کو استخارے پر کوئی کوشچن الجھن آپ پاس بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپائنٹمنٹ تو لینا ہوگی, اور اپائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو ڈائل کرنا ہے 0334-222-212. آپ سیواج سٹون کی فیس بک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, سیواج سٹون SVAHJSTONE. اور آپ یوٹیوب پر بھی مجھے دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانا ہے ڈاکٹر ڈی آر جلیل اسلم آفیشل. اس پہ آپ جائیں گے تو آپ یوٹیوب پر بھی مجھ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ سنتے چلے جائیے سیواج سٹون کا پروگرام, اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنی لائف کو بدلنے کے لیے, اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے, اور اپنی تقدیر کو پرواز کی طرف لے جانے کے لیے. اور میں بالکل 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں, اور آپ میرے ساتھ ہماری پریزنٹر ارم شہزادی کو بھی سنتے چلے جا رہے ہیں, اور ارم شہزادی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ سنتے چلے جائیے, اپنے کوشچن فٹافٹ لکھتے چلے جائیں جو کوشچن کرنے ہیں, اور 1 سیکنڈ میں 1 کوشچن کا جواب آپ بالکل لائیو لیتے چلے جائیں. جن کی کال نہیں مل پائے گی وہ بالکل ہم سے ناراض نہ ہو, اس کا طریقہ کر یہ ہوگا کہ آپ جو سیواج سٹون کے جو نمبر آپ کو بتا رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھیجیں, آپ وائس نوٹ بھیجیں اس ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں آپ کو فوراً جواب دوں گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا وائس نوٹ بالکل لائیو پروگرام میں شامل کر دیں گے, اور اگر آپ چاہیں گے کہ نہیں پروگرام میں آپ کی آواز یا آپ کا کوشچن نہیں آنا چاہیے, تو پھر میں آپ کو جواب بھیج دوں گا. آپ بالکل اپنا وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں سیواج سٹون کے ان نمبروں پہ جو نمبر آپ کو بار بار بتائے جا رہے ہیں.
8: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام عائشہ اسلم ہے, میری تاریخ پیدائش 19 فروری 2003 ہے, میری شادی جو ہے وہ خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر, پلیز مجھے بتائیں اس کے بارے میں, تھینک یو.
6: عائشہ اسلم صاحبہ, آپ کی شادی تو خاندان میں ہی ہونی ہے, اور خاندان میں آپ کو پتا ہے جہاں پر رشتہ بار بار آ رہا ہے بار بار جا رہا ہے, آپ کی طرف سے تو نہیں مانا جاتا, لیکن رشتہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے, پھر آتا ہے, آپ اور آپ کی امی نہیں مانتے لیکن رشتہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. لیکن آپ کی شادی خاندان میں ہی ہونی ہے, اور یاد رکھیے گا کہ 16 نومبر آپ کی نکاح کی ڈیٹ ہے, 16 نومبر کو آپ کی خاندان میں ہی نکاح ہو رہا ہے, اور آپ ریڈی رہیے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. بہت کوشش آپ کر رہے ہیں کہ نہ ہو, لیکن یہ شادی خاندان میں ہونی ہے, اور عائشہ اسلم کی شادی آپ کی بہت کامیاب ہونی ہے, آپ بالکل نہ گھبرائیں, آپ بہت کامیاب رہیں گی. آپ کی شادی کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی بریڈ فورڈ چلے جائیں گے, کوئی ایسے رستہ بنیں گے کہ آپ دونوں بریڈ فورڈ چلے جائیں گے. آپ کیسے جائیں گے, اسٹوڈنٹ کی طرف سے جائیں گے یا کچھ بھی رستہ بنے گا, پھر بریڈ فورڈ میں آپ کی لائف گزرے گی. آپ سیواج سٹون کا مون سٹون پہن لیجیے, مون سٹون آپ کی طبیعت میں سکون لے آئے گا, اور شادی آپ کی بہت کامیاب رہے گی, اور سیواج سٹون کا مون سٹون ملے گا آپ کو 0333-555-0011.
9: آپ سن رہے تھے سیواج سٹون, اور ڈاکٹر جلیل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جیم سٹون ایکسپرٹ ہیں, موٹیویشنل سپیکر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلر بھی ہیں. وہ آپ کو آپ کا لکی پتھر بتا رہے تھے, اور آپ گھر بیٹھے اس لکی پتھر کو جان سکتے ہیں. اس کے لیے लिए आपको कॉल करनी होगी 0333-555-0001। नंबर रिपीट किए देती हूँ 0333-555-0001। क्योंकि अब हमारा जाने का वक्त हो गया और आज आपने भरपूर इस्तेफादा उठाया डॉक्टर जलील असलम की गुफ्तगू से, और आने वाले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सा लकी पत्थर यूज करें तो आपके काम में, कारोबार में और आपके रिस्क में इजाफा हो सकता है। और अगर आप घर बैठे अपना पत्थर लकी पत्थर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉल करनी पड़ेगी। दिए गए नंबर ये है 0334-222-312।
6: शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जिंदगी के सैलाब में बेशुमार लोग मुसीबतों की जद में आते हैं, मगर मुशाहिदा बताता है कि आम तौर पर लोगों का अंजाम दो किस्म का होता है। एक वो लोग जो मुसीबतों के मुकाबले में ठहर नहीं पाते और मायूसी और दिल शिकस्तगी का शिकार होकर रह जाते हैं। दूसरे वो जो मजबूत आसाब वाले साबित होते हैं, वो मसाइब का मुकाबला करते हैं और आखिरकार अपने लिए एक जिंदगी बनाने में कामयाब हो जाते हैं और जिंदगी की उस कश्ती पर सवार हो जाते हैं जो कश्ती बगैर किसी से टकराए हुए एक ट्रैक पर भागती चली जाती है और आखिर अपनी मंजिल को इतनी बुलंदी पर ले जाती है कि जहां पे इर्द गिर्द की गर्म सर्द हवा भी नहीं पड़ सकती, ना कोई मुसीबत आती है ना कोई पानी का जोश आता है, और वो लोग हमेशा अच्छी नसीहत को, अच्छे लेसन को लिए हुए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी को खूबसूरती की मंजिल की तरफ ले जाते हैं। मेरी तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद।
9: प्रोग्राम आप सुन रहे थे सिवाज स्टोन। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका और अगर आप डॉक्टर जलील असलम से रابطہ करना चाहते हैं तो जाते जाते आप लोगों को नंबर नोट करवाए देते हैं 0333-555-0001। रिपीट करती हूँ 0333-555-0011। अल्लाह हाफिज।
10: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बंद।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
5: कूल किंग।
6: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
5: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
8: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैच सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 140

0: EBFT मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
1: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Tezi se phailti digital duniya ek zabardast salahiyat ke saath saath ek aham zimmedari bhi. Mazhabi firqa varana या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोज बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
8: कूल किंग।
9: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बंद लेकिन बीपी हाई।
10: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
12: ये क्या है भाई?
11: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश।

0: येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
0: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
4: ये क्या है भाई?
3: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
2: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
3: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: कूल किंग। चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
0: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां खार वहां HBL
2: सिवान स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल बराए रास्ता 0333 555-0011

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Kisi bhi insaan ke liye sabse ahem hoti hai uski sehat.
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
11: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
10: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: कूल किंग।
13: अबे देख के नहीं चलाता क्या? हम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
14: हल्का सा टच हुआ, लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी। छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा।
15: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता AC।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
11: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
10: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
16: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
11: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
10: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
17: एक दो तीन ये लो, एक दो तीन ये लो।
18: ये क्या है भाई?
19: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो। और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
20: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। ये लो बाय जैस कैश।
19: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो।
3: Apple, Samsung and nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
10: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de aazadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
11: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
10: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
21: किसने कहा था पैसे बचा

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, तब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिले सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।

0: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो।
1: ये क्या है भाई?
2: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
2: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: One station. 100
6: FM. अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: It's not what you play, it's how you play it.
8: We play all